0: है छोड, आज दाइले चलाउँछ
1: ला
2: जान्दैन साँड
0: के भयो त ठिक नि हो बस
3: सम्झिनु
2: फर्के फर्के

0: ल है अब काम डुब्यो जानुपर्छ।
1: उसो भए बिदा माग्नु पर्ला है। ल है लिम्बुनी कान्छी सेवारो
2: सेवारो।
1: ल है मेरो लिम्बुनी कान्छी सेवारो।
3: लिम्बुनी को लिम्बुनी कसले भन्नु लिम्बु भनेर म गरो
0: बिचारा। इट्स ओके म्यान।
4: Sare kine nu make varo when you around baby I'm like silaro akin sare kine nu make varo

BCL का विभिन्न होम अप्लायंस को खरीद में कैश बैक तथा श्योर साउंड गिफ्ट वॉशिंग मशीन में 6 केजी एरियल मैटिंग एसी में फ्री इंस्टॉलेशन र नागरिकता मात्र भए पुग्छ सहज ईएमआई मार्फत खरीद गर्न सकिन्छ ग्लोबल नंबर 1 TCL इंस्पायर ग्रेटनेस एक्सपीरियंस